सुप्रभात। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जयपुर का विविध भारती केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम विविध भारती जयपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा केवल कुछ ही पलों की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग

0: लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का ये विचार है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में मदद करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस भाग 185। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें, कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे 9:30 पर। सुबह 10 का समय है पिटारा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का, सुनिए निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम दिन में 1 और दिन में 2 कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिन में 3 का समय है सखी सहेली कार्यक्रम का और 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, थैलेसेमिया की बीमारी और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर आशय प्रमोद से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुन पाएंगे। 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने।

शाम 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। रात 8 कार्यक्रम होगा हवा महल, नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार और रात 10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और रात 11 रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 185।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 185।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। श्रोताओं आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी,
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम सोपान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोकरकर पर। कल्पना जी आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजुमदार जी जो बहुत उत्तम गायक थे और उस्ताद रजब अली खां साहब के पट्ट शिष्य थे, तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला। कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी जी। संगीत विषय पर और अलग अलग पहलुओं से संगीत को जानने का मौका मिला
1: जी।
2: और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया था और बहुत नियमबद्ध तरीके से तालीम देते थे। बेसिकली वो व्यवसाय से इंजीनियर थे, बहुत कठिनाइयों से संगीत की तालीम प्राप्त की और उसको आखिर तक निभाया
1: जी।
2: बहुत अलग अलग प्रकार के कलाकारों के सान्निध्य में वो आए। हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है
1: जी।
2: करीब 12-15 साल मैंने उनसे तालीम ली और उनके गुजर जाने के बाद मैंने डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया
1: जी।
2: उसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अलग अलग ठुमरियाँ सिखाई। ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को

0: खाया। बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावाभिव्यक्ति कैसे की जाए,
1: जी,
0: किस शब्द को किस तरह पेश किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया
1: जी।
0: और मुझे हालांकि पंडित वसंत राजूरकर जी से भी मार्गदर्शन मिला। हैदराबाद में थी मैं, मेरा विवाह होने के बाद
1: जी।
0: तो वहाँ उनके संपर्क में आने के बाद उनसे भी मैंने ग्वालियर घराने की कई बंदिशें, अष्टपदियाँ, तराने अलग अलग प्रकार के सीखे और टप्पा गायन शैली भी उन्होंने मुझे सिखाई, कई टप्पे ग्वालियर घराने के सिखाए। तो इस तरह अलग अलग पहलुओं से मैंने संगीत को देखा जाना
1: जी।
0: और फिर कुछ समय बाद, अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रची हैं?
0: कई बंदिशें मैंने तैयार की हैं, उसमें कि आज आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे।
1: जी जी।
0: कुछ ठुमरियाँ तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है
1: जी।
0: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं इनमें भी मुझे बहुत रुचि है क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ।
1: जी जी।
0: उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है कह सकते हैं,
1: जी।
0: या उसकी छाप उस गायकी पर है। तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है,
1: जी
0: तो उसमें भी कई बंदिशें मैंने रची हैं।
1: जी। तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
0: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई हैं,
1: जी।
0: क्योंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी।
1: जी।
0: तो राग हिंडोल ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है,
1: जी
0: इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है
1: जी जी
0: और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है, इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है। और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियाँ हैं
1: जी
0: वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है।
1: जी।
0: तो झूलत है कृष्ण मुरारी,
1: वाह,
0: राधे संग सखियां झुलावे,
1: क्या बात है।
0: तो रूपक ताल में ये मध्य लय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत करेगी और उसके पश्चात एक तराना
1: जी।

वाह अनुजा जी, आपने तो मन मोहित कर लिया हम सबका। ये जो बंदिश थी जिसे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की पींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही हैं, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, चलने से पहले अपने साजिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञाने

इस श्रृंखला की नौवीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थीं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर थे ज्ञानेश्वर सोनवणे। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
4: प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोटिवेशनल बूस्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुनीम जी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार SD बर्मन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म का गाना गीता दत्त और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

अगला जो गीत है ये आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ों में मस्त कलंदर फिल्म का गाना, असद भोपाली के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जनक जनक पायल बाजे इस फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार वसंत देसाई।

0: घर घर में दिवाली, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: यह है त्रिशूल फिल्म का गाना लता मंगेशकर और यशुदास की आवाज़ों में सहेल लुधियानवी के बोल संगीत खयाम का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है। हम हैं राही प्यार के। अगला गाना सुनते हैं, बनफूल फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गाना। यशुदास और अनुराधा की आवाजें, इंदिवर के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ

0: भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल है। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक

0: चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112-3401 और 0112-3717106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने PM के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदा।

ने ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं, और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस वक्त आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए, और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल

टिश्यू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
4: प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोटिवेशनल बूस्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।
5: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
6: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
5: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
6: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
7: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
8: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देखकर ही खरीदें।
0: फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज़ है, स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये जिस्म टू फिल्म का गाना केके की आवाज़ में है, आर्को प्रवो मुखर्जी और मुनीश मखीजा का लिखा हुआ गाना, आर्को प्रवो मुखर्जी का संगीत।

0: जिस्म टू इस फिल्म का। ये गाना आपने सुना के की आवाज़ में, आर्को प्रावो मुखर्जी और मुनीश मखीजा का लिखा हुआ गाना, संगीत आर्को प्रावो मुखर्जी का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये है बर्फी फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज़ में। इस गीत को लिखा स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई प्रीतम ने।

0: दोस्तों, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हर वर्ष 11 मई को ये दिन मनाया जाता है। 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

ब्रेक के बाद लीजिए अब सुनिए खिलाड़ी 786 इस फिल्म का गाना मीका सिंह की आवाज़ में, समीर अनजान के बोल, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को ये दिन मनाया जाता है। राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक जो परमाणु परीक्षण किए गए उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। 11 मई 1999 को पहली बार ये दिन मनाया गया। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना है। और इस दिन जो है भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इंजीनियरों के जो योगदान होता है उनके योगदान को याद करते हुए उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करके इस दिन को मनाते हैं। तो आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। चलिए अगला गाना सुनते हैं, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इस फिल्म का गाना ज्योतिका टांगरी और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में। वायु का लिखा हुआ गाना, संगीत है सचिन जिगर का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना शीरी फरहात की तो निकल पड़ी। इस फिल्म का गाना है ये। के और श्रेया घोषाल की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, संगीत है जीत गांगुली का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी गाने हैं जो आपको सुनवाना बाकी है, सुनते हैं।
1: हम विविध भारती जयपुर से बोल रहे हैं 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ अभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
4: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उड़ता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर

0: करके हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
2: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मुख पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सके। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज प्रदेश के

0: सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र। सवेरे के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुने FM रेडियो पिंक सिटी के कार्यक्रम।

हेलो हेलो हेलो खमाखनी जयपुर रेडियो पिंक सिटी की सुबह की शुरुआत हो चुकी है एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का और वर्किंग वीक का शुभारंभ करने का है समय और हम इसीलिए हर सोमवार को रखते हैं लाइट एंड फ्री। सिर्फ आपकी पसंद का संगीत सुनाएंगे आपको चॉइस कनेक्शन में 11 बजे, टेंशन फ्री इंस्पायरिंग खबरें न्यूज एंड ब्लूज में 10 बजे, अभी वक्त लवली मॉर्निंग चिट चैट का। अगले 2 घंटे 50 मिनट प्रतीक यानी कि मैं रहूंगा आपके साथ ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी। सुनते रहिए और सुनाते रहिए।

सो लवली मॉर्निंग चिटचैट में सोमनाथ स्वाभिमान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। 11 मई का है दिन और आज हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 1998 में आज ही के दिन पोखरण में हमारे देश ने परमाणु हथियारों और टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया था, जिससे भारत उन देशों की गिनती में आ गया था, उन देशों की गिनती में शामिल हो गया था जो परमाणु शक्ति रखते हैं। ऑपरेशन शक्ति नाम था इस परीक्षण का। तो आप सभी को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, यानी कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, आत्मनिर्भर भारत विजन 2047 और देश के जन जन की विकास की भागीदारी के लिए यह थीम बड़ी एप्रोप्रिएट, बड़ी उपयुक्त है। उम्मीद करें कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स और हमारे टेक्नोक्रेट्स लगातार इसी सोच के साथ नवाचार करते रहेंगे, तभी हम एक विकसित भारत बना पाएंगे। दोस्तों, रेडियो पिंक सिटी पर आज का इतिहास आपको सुनाएंगे बस कुछ देर में। आप सभी को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: जयपुर. लेट्स रॉक विद रेडियो बिग सिटी 100.3 एफएम.
1: मैं ता करदा तेरी वे खोल के दिल दे के मिलने का दे आया करो
2: कुछ तो बातें.

दोस्तों एक नजर डाल लें आज के इतिहास पर। 11 मई भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। जैसा अभी जिक्र किया था, ऑपरेशन शक्ति का जो पोखरण में हमने परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में, वो परीक्षण आज ही के दिन हुए थे। इसके ठीक 2 साल बाद भारत ने एक मुकाम और हासिल किया था। 11 मई 2000 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्मी बच्ची आस्था, वो बन गई थी भारत का 1 अरबवां सिटीजन, यानी कि भारत की जनसंख्या घड़ी ने इस बच्ची के जन्म के साथ ही 1 अरब बजा दिए थे। इसके अलावा 1951 में आज ही के दिन नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदियों पुराना ये मंदिर आक्रमणों के चलते जीर्ण शीर्ण हालत में था, जिसे आजादी के बाद दोबारा खड़ा किया गया था, और इसीलिए आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान दिवस के तौर पर। इसके अलावा आज जन्मदिन है रिनाउंड क्लासिकल डांसर मृणालिनी साराभाई का, और राइटर सादत हसन मंटो का भी जन्मदिन है आज। बहरहाल आगे आपको बताएंगे मौसम का हाल। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी, आप हैं प्रतीक के साथ।

0: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो

दोस्तों कल यानी रविवार को मैक्सिमम टेम्परेचर रहा करीब 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर था 29 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तावड़ा पड़ रहा है दोस्तों, अपने आप को ठंडा रखिए, खाली पेट घर से मत निकलिए, ठंडे पेय पदार्थ लेते रहिए, विशेषकर कि वो पेय पदार्थ जिनकी तासीर ठंडी हो। ऐसे ड्रिंक्स, ऐसे पेय पदार्थ मत लीजिए जिससे बदन और दिमाग में गर्मी चढ़े, बाकी आप खुद समझदार हैं। थोड़ी देर में सिजलिंग जयपुर में आज के इवेंट्स सुनते रहिए रेडियो Pink City।

दोस्तों आज यदि घूमने फिरने का है प्लान तो सिजलिंग जयपुर में है कुछ कूल ऑप्शंस। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एग्जीबिशन लगी है जवाहर कला केंद्र के साउथ एक्सटेंशन में, तो उसका अवलोकन आप करके आ सकते हैं। RIC में आर्ट एग्जीबिशन कम सेल का ऑप्शन भी है आर्ट लवर्स के पास। इसके अलावा कुछ कॉफी हाउसेज और रेस्टोरेंट्स कई इनोवेटिव म्यूजिक एंड कॉमेडी इवनिंग्स भी रख रहे हैं इन दिनों, तो डिटेल्स ऑनलाइन चेक कीजिए और प्लान बना लीजिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी समय का सदुपयोग आप कैसे करना चाहते हैं वो आप सोचिए। दोस्तों बॉलीवुड में आज किसका है जन्मदिन ये हम आपको बताएंगे बस कुछ देर में। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

दोस्तों बॉलीवुड में आज जन्मदिन है 1950 में जन्मे एक्टर स्वर्गीय सदाशिव अमरापुरकर का। अहमदनगर में जन्मे सदाशिव इतिहास में मास्टर्स थे, पर एक्टिंग का भी शौक रखते थे। थिएटर से हुई शुरुआत, मराठी फिल्म 22 जून 1897 इस फिल्म में बाल गंगाधर तिलक के रोल से डेब्यू किया। अर्धसत्य, आखिरी रास्ता, हुकूमत, आंखें, इश्क, कुली नंबर वन, सड़क, गुप्त जैसी 300 से भी ज्यादा फिल्म्स में अभिनय किया सदाशिव ने, और हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जाते जाते आखिरी रोल एक छोटी सी एक्टिंग क्लास दी सदाशिव ने फिल्म बॉम्बे टॉकीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। वो 4 मिनट का सीन सदाशिव की एक्टिंग स्किल्स की पीक थी। ऑनलाइन अवेलेबल है ये सीन, आप भी देखिएगा जरूर। विश सदाशिव जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म से एक गीत।

दूसरा टैलेंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा का जन्मदिन भी है आज। 1992 में मुंबई में जन्मी अदा, हॉरर फिल्म 1920 से 2008 में शुरुआत हुई। फिर हसी तो फसी, कमांडो 2 और 3, सेल्फी, केरला स्टोरी, बस्तर जैसी हिट फिल्म्स का हिस्सा रही हैं अदा। हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फिल्म्स में भी काम किया है उन्होंने। विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आइए सुनते हैं उनकी फिल्म से एक गीत। और दोस्तों इसी गीत के साथ लवली मॉर्निंग चिट चैट का सिलसिला खत्म करने का हो जाएगा वक्त। थोड़ी देर में आपसे फिर से जुड़ेंगे न्यूज़ एंड ब्लूज़ लेकर के। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

दोस्तों वक्त हो गया है आपको फूलों से खिलखिलाती महकती खुशगवार खबरें सुनाने का, अखबारों की गली सड़ी बासी खबरों से दूर, गुड एंड लवली न्यूज ओनली इन न्यूज एंड ब्लूज, बस कुछ देर में।

दोस्तों, देवस्थान विभाग खुद के अधीन बड़े ऐतिहासिक मंदिरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बड़ी तैयारी कर रहा है। इसके तहत श्रद्धालु अब एक क्लिक पर मंदिरों का इतिहास, परंपराएं, आरती, झांकियां और प्रमुख आयोजनों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसका कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक ये सारा कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य मंदिरों को भी इस डिजिटल अभियान से जोड़ा जाएगा और श्रद्धालु सुबह शाम की आरती के लाइव दर्शन भी ऑनलाइन कर सकेंगे। जयपुर के दो मंदिर ऑलरेडी ऑनलाइन हैं। योजना का पहला चरण जयपुर से ही शुरू हो रहा है। प्रमुख व ऐतिहासिक 25 मंदिरों की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और इस पहल से दोस्तों ना केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नया बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो न्यूज एंड ब्लूज में श्रद्धालुओं के लिए ये सबसे अच्छी खबर मैंने आपको शुरुआत में ही सुना दी है। और भी खबरें आपको सुनाएंगे न्यूज एंड ब्लूज में। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

0: सिगरेट तंबाकू जर्दा स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, फिर क्यों हम इनके नजदीक चले जाते हैं? दिल ही लगाना है तो गीत संगीत का जादू है ना?
1: कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है।
0: इंफोटेनमेंट का डोज 100.3 FM पर मिलेगा ना? तन और मन दोनों रहेंगे स्वस्थ जब आप बनेंगे रेडियो पिंक सिटी के दोस्त। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

दोस्तों, भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता रखने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। शुक्रवार की शाम को डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि सीरीज की इस नई आईसीबीएम का परीक्षण किया। मिसाइल की तेज रोशनी बांग्लादेश तक दिखाई दी। शनिवार को डीआरडीओ ने एक्स के जरिए जानकारी दी कि MIRV तकनीक से लैस इस मिसाइल का कई वॉरहेड के साथ परीक्षण किया गया है। इन वॉरहेड के अलग अलग टारगेट्स थे जो सभी मेट बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई परमाणु वॉरहेड ले जाने की सक्षम इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। इतनी

दूर तक मार करने में सक्षम मिसाइलें अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ही हैं, और भारत का नाम जल्द ही इसमें जुड़ने वाला है। इस मिसाइल की जद में दुनिया का हर कोना आ सकता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का चक्कर मार सकती है ये मिसाइल, हर टारगेट को मीट कर सकती है पूरी पृथ्वी पर। सशक्त भारत और सक्षम भारत की तरफ एक और कदम हमने ले लिया है इस मिसाइल के टेस्ट के जरिए, और न्यूज एंड ब्लूज में आपको और भी अच्छी खबरें सुनाते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

0: की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,
0: आपका साथी आपका दोस्त रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के एक लंबे शोध में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जो महिलाएं सिलाई, बुनाई, क्रोशिया और बागवानी में व्यस्त रहती हैं, वो अन्य महिलाओं की तुलना में औसतन 8 साल ज्यादा जीवित रहती हैं। ये लंबी

और सेहतमंद जिंदगी का सीक्रेट कोड साबित हो रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार जब कोई महिला ऊन के फंदों को बुनती है या कपड़े सिलती है तो उसके हाथों की लयबद्ध और दोहराव वाली हरकतें, यानी कि रिपीटेबल जो हरकतें होती है, वो तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई ध्यान लगा रहा हो। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल का स्तर गिरता है और खुशी देने वाले हार्मोन डोपामीन जो है उसका स्तर बढ़ता है। सरल शब्दों में कहें तो जब सुई धागे में पिरोई जाती है तो दिमाग बाहरी शोर से कटकर पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और मेडिटेटिव स्टेट जो है वो अचीव हो जाती है। सिलाई कढ़ाई बुनाई और बागवानी का शौक जीवन में एक अनुशासन लाते हैं। घरेलू काम योग जितने ही प्रभावी हैं, इससे मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये कहना है कि पारंपरिक शौक की तरह ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक दूसरे रिसर्च में यह भी पाया गया था कि बुनाई करने से हृदय गति जो है वो प्रति मिनट 11 धड़कन तक कम हो सकती है, जो शरीर को रिलैक्स्ड मोड में डाल देती है। तो दोस्तों, विशेषकर की महिलाएं यदि वापस लौटें उन शौकों की तरफ जो पहले जो है बुजुर्ग महिलाएं अपनाया करती थी, यानी कि सिलाई बुनाई कढ़ाई, तो आप ना सिर्फ अपने आप को व्यस्त रख सकती हैं बल्कि अपने जीवन की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी बढ़ा सकती हैं, ऐसा कह रहा है ये शोध। बहरहाल, न्यूज़ एंड ब्लूज़ में अच्छी खबरें और भी बाकी हैं। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

दोस्तों रणथंभौर सेंचुरी की बाघिन दुर्गा अभी 55 बाघ बाघिनों में जो मौजूद हैं वहां पर उन बाघ बाघिनों में सबसे सफल मां घोषित कर दी गई हैं। सफल इसलिए क्योंकि अपने चारों शावकों को जन्म के करीब एक साल बाद भी वो जिंदा रख पाई है। सेंचुरी में लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। अगस्त 2025 में उसके चार शावकों की पुष्टि हुई थी और अभ्यारण्य में अमूमन इतने लंबे समय तक कम ही बाघिने हैं जो शावकों को जिंदा रख पाती हैं। कभी प्राकृतिक तो कई बार खाने की कमी या दूसरे टाइगर्स के हमले में शावकों की मौत हो जाती है।

है। जन्म के एक साल में इन्हें जिंदा रखने की जो दर है वो अमूमन 40 से 50% ही रहती है, यानी कि आधे से ज़्यादा शावक जो हैं वो इतना लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन दुर्गा ने अपने चारों शावकों को जिंदा रखा है, सकुशल रखा है, और ये सभी शावक सैलानियों को अमूमन दर्शन भी देते रहते हैं। तो जय माँ दुर्गा जो अपने बच्चों को संभाल के रख पाई, और आने वाले समय में ये बच्चे बड़े होकर और भी ज्यादा सैलानियों को दर्शन देते रहेंगे, ऐसी रखें उम्मीद। न्यूज एंड ब्लूज में एक और खबर आपको सुनाएंगे, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

और दोस्तों न्यूज एंड ब्लूज में आज की आखिरी खबर महाराष्ट्र के 17 वर्षीय छात्र रिंदक करोड़िया की, जिन्होंने बंद कमरों की खराब हवा से निपटने के लिए माइक्रो एलगी आधारित एरोवाइव सिस्टम बनाया है। ये उपकरण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम कर ऑक्सीजन बढ़ाता है। रिंदक को 14 साल की उम्र में क्लास में सिरदर्द, थकान और ध्यान भटकने की समस्या हुई और उन्होंने पाया कि बंद कमरों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ऐसा होता है। करीब 2 साल की रिसर्च और आईआईटी बॉम्बे की मदद से उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कमरे की हवा साफ करता है। स्कूलों में प्रयोग से छात्रों की एकाग्रता जो है 24% तक बढ़ी है। ये जो है रिजल्ट सामने निकल कर के आया है। रिंदक अब इनविजिबल हीरोज लैब से बच्चों को विज्ञान से जोड़ रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट देश की 5000 एंट्री में टॉप 100 इनोवेशंस में शामिल किया गया है। और दोस्तों इसी खबर के साथ न्यूज़ एंड ब्लूज़ का सिलसिला ख़त्म करने का हो चला है वक्त। थोड़ी देर में आपसे फिर से जुड़ेंगे चॉइस कनेक्शन में, जहां हम सुनाएंगे आपको आपकी पसंद के गीत। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

दूसरे चॉइस कनेक्शन में आपकी पसंद के गीतों का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। पहला गीत आप सुन रहे थे फिल्म दयावान से, इसमें आप आवाजें सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की। अजीज कैसी के

थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इस गीत को रिक्वेस्ट किया था मोहम्मद रियाज जी ने और उनकी पसंद का गीत हमने प्ले किया चॉइस कनेक्शन में। अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 2200700 2200800। रेडियो पिंक सिटी के नंबर्स हैं ये, इन पर कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं और वो गीत हम प्ले करेंगे रेडियो पिंक सिटी पर। दूसरा तरीका भी है आपके पास, आप जा सकते हैं फेसबुक पेज 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, इस पेज पर जाकर के लास्ट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं और वहां से वो रिक्वेस्ट पिक की जाएगी और हम प्ले करेंगे उस गीत को रेडियो पिंक सिटी पर। जैसे हम प्ले करने वाले हैं अब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत, जिसे रिक्वेस्ट किया है सुनीता झालानी जी और महबूब चौहान जी ने, उनकी पसंद का ये गीत हम प्ले करेंगे। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।

0: दोस्तों फिल्म आरजू से ये गीत आप सुन रहे थे, अब तेरे दिल में हम आ गए। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, अन्नू मलिक का संगीत था और इस गीत को रिक्वेस्ट किया था अक्षय जी ने। अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे जिसे रिक्वेस्ट किया है ममता लखोटिया जी ने, फिल्म का नाम है मर्यादा। चॉइस कनेक्शन में आपकी पसंद के गीतों का सिलसिला रहेगा जारी, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी।
1: गई रुत

दोस्तों, अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म मधुमति से दिल तड़प तड़प के दे रहा है ये सदा। इस गीत में आप आवाज़ सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। इस गीत को रिक्वेस्ट किया था दालचंद कोहली जी ने, और अब जो गीत आप सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं ये है फिल्म नसीब से। इसको रिक्वेस्ट किया है अहमद मंसूरी जी ने। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

दूसरे भक्ति गीत आप सुन रहे थे, नारायण पटेल जी की रिक्वेस्ट पर, कुमारा बाप था फिल्म का नाम, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत और चॉइस कनेक्शन में आपकी पसंद के गीतों का सिलसिला रहेगा जारी। दोस्तों अगला गीत जो हम प्ले करने वाले हैं ये है फिल्म पत्थर के सनम से, और इस गीत को रिक्वेस्ट किया है बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: नाम खुदा का ले जरा सबक शुरू।

दोस्तों सोनी महिवाल फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और अन्नू मलिक का संगीत। इस गीत को रिक्वेस्ट किया था प्रीति नितिन अग्रवाल जी ने। और दोस्तों ये

था आज का चॉइस कनेक्शन। आपको मैं छोड़ के जाऊंगा उस गीत के साथ जिसे रिक्वेस्ट किया है विवेक कुमावत जी ने। फिल्म का नाम है सौदागर। और दोस्तों, अगर आपका रिक्वेस्ट किया हुआ गीत आज प्ले नहीं हो पाया है तो बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त बस एक ही घंटे का होता है चॉइस कनेक्शन में। हम कोशिश करते हैं कि जितने गीत शामिल कर सकें उतने शामिल किए जाएं, लेकिन सारे गीत तो शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोशिश करते रहिए, अगला सोमवार जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ज़रूर प्ले हो जाएगी, ऐसी उम्मीद रखिए। टिल वी मीट अगेन, अपना और अपने आसपास सबका रखिए ख्याल। आप सभी को प्रतीक का बाय बाय, नमस्ते, सलाम।

0: आपने सुना एफएम रेडियो पिंकसरी कार्यक्रम। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे।

0: करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरु मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या होगा वो खास, चलिए आपको बताते हैं। प्रौद्योगिकी, यानी कि आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। प्रौद्योगिकी ने हमारी जिंदगी को नए रंग और नई रफ्तार दी है। रेडियो की कहीं मधुर आवाज है तो कहीं मोबाइल की दुनिया, टीवी की चमक है कहीं तो कहीं सेल्फी का नया अंदाज है। तकनीक अब हर रिश्ते और हर एहसास का हिस्सा बन चुकी है। प्रौद्योगिकी दिवस पर सुनिए कुछ ऐसे ही गीत जिनमें इन आधुनिक शब्दों की दिलचस्प झलक सुनाई देगी। तो चलिए आगाज करते हैं पुराने समय से, फिर धीरे धीरे लौटेंगे नए समय तक। तो दीजिए सुनवाते हैं आपको पतंगा फिल्म का गीत शमशाद बेगम और चित्तालकर की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, सी रामचंद्र का धुन और इस फिल्म का नाम पतंगा।
3: रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है, लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235 मैच टच। यार जिस लड़के

0: एक अंतराल का।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
4: प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोटिवेशनल बूस्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानन किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, ड्रीम गर्ल। इस फिल्म से जॉनिटा गांधी और मीत ब्रोस की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोस ने।

0: और अब आपको सुनवाते हैं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने, हिमेश रेशमिया, कीर्ति सगाठिया और पलक मुछाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम जय हो।
1: Hey!

0: ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

करण सहंबी की आवाज में सुनिए लुका छुपी फिल्म का ये गीत। निर्माण ने इसकी रचना की है और धुन बनाई है तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

विशाल ददलानी और नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजों में सुनिए बोल है मयूरपुरी के प्रीतम की धुन। फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

0: और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार ज़रा इबारत को ध्यान से पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको और एक बार मैं पढ़ देती हूँ ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।
1: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन जो जो जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाज़ा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफ़र के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाज़ा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफ़र की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मज़े ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं, अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत।

0: तो सही पहचाना है आपने, बिल्कुल यही है वो गीत।
1: एक अजनबी हसीना से।
2: आप सुन रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आपको थोड़ी देर बाद सुनवाएंगे। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
1: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी नाथ द्वारा, केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीवद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीददारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री खो बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंचरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव हैं। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुरीला सफर कार्यक्रम का शेष भाग।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को, करण अर्जुन फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे। तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: संयोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश

0: करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए। सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है, और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज़्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हों तो जल्दी से निकल जाते हैं, और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकलें तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

तो कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी विशेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूँ, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

0: जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
6: प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोटिवेशनल बूस्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश

0: करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए। सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का

0: आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025

0: के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

KL परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, सबिता बैनर्जी और सीता की, फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस थोड़ी ही देर में

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो

0: कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सकें, और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही, लेकिन
1: बिल्कुल,
0: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर
1: वो बहुत
0: तालाब
1: जरूरी
0: है तो
1: है।
0: आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं, तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गाँव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसें एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी कर
1: ठंडी
0: लेती हैं
1: रहती है,
0: तभी निकलती है। तो
1: बिल्कुल
0: हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं,
1: नहीं, बिल्कुल
0: है
1: ये बात
0: ना।
1: भी है। लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक
0: जी
1: संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में
0: बिल्कुल
1: होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह के छपरा बना दिया जाता
0: बिल्कुल
1: है जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन को भी वो
0: हाँ
1: चबाते रहते हैं। इस
0: बिल्कुल
1: गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी
0: बिल्कुल।
1: बन जाती है।
0: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नज़र रखें, कि पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीज़ों को हम डस्टबिन में ही डालें, या
1: बिल्कुल
0: कचरा जहाँ डालते हैं वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें, और पशुओं का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं।
1: हाँ
0: और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए हैं उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे
1: अच्छा,
0: साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
1: क्या
0: भेजी
1: बात
0: है,
1: है।
0: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले अभी तो
1: हाँ
0: फिलहाल
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या।
0: नहीं, है ना,
1: ये
0: तो
1: गलत बात है ना।
0: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा
1: अच्छा
0: में हम कहानी लेकर आए हैं, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो,
1: अच्छा
0: इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ऐसे
0: बिल्कुल,
1: जब धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो,
0: नाच ही लो। तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश ना करेगा और ना किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ

0: नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना? रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और 3रे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती? पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा

0: नाश्ता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे दो घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था, लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
3: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ, हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बता देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,

0: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से, जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हां खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे, अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है, मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
1: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
0: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है, उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
1: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
2: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
1: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
2: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
1: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले, लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से, पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी, थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
3: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। अब बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
1: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
3: ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं?
1: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
3: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
1: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हो

0: वाह, ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
2: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार, अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं, ये सोच कर कि ये आसान होगा। परिणाम, बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजिए इन्होंने।
3: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु हैं जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान

0: के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज़्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता

0: चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं, हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुँच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहाँ एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है, आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी,
1: सहेलियां थीं, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे।
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ,
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ,
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती
0: लेकिन
1: है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं
0: हाँ
1: समझती हूँ, अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल
1: दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ
0: स्वार्थ
1: या
0: उनके
1: मन में कुछ
0: अंदर,
1: था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात।
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियाँ या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल, 100 की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप
0: अहंकार
1: नहीं
0: है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत
1: मंजरी।
0: बड़ा है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गई जी,
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं, तो वो रोज दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है, और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल।
0: बात है जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
1: हाँ, सही बात है। कुछ
0: गए,
1: मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: है
1: कहाँ रहती हैं, आप
0: ना।
1: वही मंदाकिनी है
0: हमने
1: जो
0: खुद ही
1: कभी साथ
0: दो
1: पढ़ा करती थी,
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं। अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
1: हाँ,
0: लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया।
0: लिया,
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाएं, तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं, तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज़्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज़्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों, रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं। बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है, लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज़्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज़्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह खड़े साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज़्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून

0: देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो हाँ, तो मंजरी बताइए,
1: हमारे
0: दोस्ती में और क्या क्या होता है?
1: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं, तो दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
0: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं?
1: भाई देखते
0: मुझे तो
1: हैं,
0: लगता है
1: चलो
0: दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है।
1: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते हैं।
0: मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
1: देखती हूँ, चलिए ठीक है, कर लेंगे। और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
0: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए

0: रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल
0: बात है।
1: सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है। वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है,
0: जी
1: है ना?
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम
1: तो
0: लोग सुनते हैं गीत।
1: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठ कर खाते हैं तो कितना मजा आता है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत।
0: जी,
1: तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है, लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा, और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या
1: लिखते हैं कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम
0: दोनों में क्या फर्क होता
1: है, फर्क होता है।
0: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है, कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली
0: तो अगली बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना, तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली है। ठीक है, तो सुन लेते हैं गीत।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू
0: जी।
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो

उदासियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं हैं, सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल, ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में हैं धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल, यादें जिनमें दर्द भी है तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

0: आज के छाया गीत में थे तलत महमूद के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: तेरी आँख के आँसू पी जाओ।
0: फिल्म जहां आरा।
1: शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम।
0: फिल्म फुटपाथ।
1: मेरे दिल कहीं और चल।
0: फिल्म दाग।
1: अंधे जान के अंधे रास्ते जाए तो जाए।
0: फिल्म पतिता।

फिल्म वली आजम। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
4: प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोटिवेशनल बूस्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

दूसरा आदमी। अभी आपने इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। संगीत राजेश रोशन का था, बोल मचरू सुल्तानपुरी के। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा गीत, आवाजें सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरुला की। फिल्म का नाम हेलो ब्रदर।

ये थे सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरुला। फिल्म थी हेलो ब्रदर। अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को, रचना रविंदर रावल की, संगीत बाबुल बोस का। फिल्म का नाम जीना तेरी गली में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब सुनिए समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने, आवाजें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म है बादल।

आ गले लग जा। अब सुनिए इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक

लगती है देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने। ये गीत है सोल्जर फिल्म से, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने, बोल लिखे हैं समीर ने, आवाज सोनू निगम की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।

0: से।
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
0: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
3: अब सुनिए बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया मुद्दत फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की, रचनाकार इंदिवर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 MHz पर। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में

0: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
3: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफ़ी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत ज़रूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के

0: भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जाँच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में 100% स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

0: रिको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रिको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रिको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावना बनी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकार

0: कार्य योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रहे हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं, जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता और संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकियां गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनायो चावेला। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर ने उजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी जिया सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगाना याद दिरावे है कि जड़ाऊं जुड़ियो रहवण री सूरत में आई कोई देश लंबा भगत नाई मजबूती चाल सके है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर माई राखी चियो। इनमाए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प उन सोमनाथ मंदिर ने ओजो सुधारी जियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता था कहो कि देश भर में अयोध्या काशी और

0: जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा नो कायाकल्प करियो जा रियो है और राज्य सरकारी तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
1: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागे देश माए हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू हो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा में थे बिना बैरियर वाली तकनीक री शुरुआत कीनी। श्री गडकरी कहो कि ई तकनीकों गाड़ियाँ टोल कॉरिडोरों 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपू आप वह जावेला। वह कहो कि ई व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपये रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जिनावरा ने बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनो घणो जरूरी है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII रासालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून ने नई दिल्ली में रखो जावेला। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राज रा 10 साल माए देश माए टाइगर रिजर्व री तादाद माए बढ़ोतरी हुई है।
2: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7, 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू विवरण री अधिसूचना जारी कर दीनी है। इन पाछे वो कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेजा वेला। इन तेत गावाई हलका माए साल माए 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद माए चालू माली साल माए 95,692 करोड़ रुपया रखी जा है। इस आगे महिला मजूरानी भागीदारी बधावन सारू कमठाणा माथे बच्चा नी देखभाल रा खास प्रावधान करी चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माय विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बधाओ देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर माय राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माय ओ ऐलान कीनो। वह कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माय इनोवेशन सेंटर खोलियो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबों जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कानीव राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थानों अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारण री दवाइयां और रसायना री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करण बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर माए खान पीन री चीजा माए जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। ई मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक कानियों आज जारी रपट्र मुजब लाडला माली साल री चौथी

0: तिमाही माय असली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माय बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकैचियो हो। इम्बीचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना न बुद्धियों काम लेवण और बचत री अरज न देश ने माली तौर मजबूत बनावण री दिशा माय मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनियारा मौजूदा हालात न ध्यान राखता थका विदेशी मुद्रा भंडार न बचावण सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 रातेत 1 मई चल रहा जनगणना रा पहला दौर रातेत करी जी स्वगणना में लाडला 10 दिन में 6.5 लाख बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। स्वगणना रा मामला में अव्वल जयपुर जिला में 50,000 बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लेनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवारों री स्वगणना सागे दूजा नंबर में थे है। ध्यान जोग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इबीचे बालोतरा जिला में सगला घरां में स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका और सुपरवाइजरां रो आज जिला कलेक्टर मान कीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में कारखाना लगावन वाला सारू रिकोरी ओर प्लॉट देवन री प्रक्रिया शुरू करी ची है। इना तेत 2,500 से 36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करन वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क में बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। अरब मौसम राज्य रा आतुणी हल्का में घनी जोरदार गर्मी बीच लू बाज रही है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हल्का में आज लू बाजणो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर में 47.3, फलौदी में 46.8, जैसलमेर में 46.5 और बीकानेर में 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करीचियो। कई थोड़ा रात्रि बगती तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करीचियो। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब दिन और रात्रि बगत तापमान माय बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रेवन रा आसार है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग माय लू बाजती रेवन री शंका है। इन बीच आवता 48 घंटा माय बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माय कठा कठा तेज आंधी सागे छाटो छिड़को वेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला में निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कन्ने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट में आ जावण 3 जना री मौके ही मौत वेकी। ए लोग मजूरी कर पाछा घरां जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मथ 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार दिया जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आई हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना में विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा आतुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

0: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।
1: कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है।

0: और हरिहरन को फिल्म लक्ष्मी सुना। संगीत शंकर ईशान लॉय का था बोल जावेद अख्तर के। लीजिए अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के थे। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म रंग में, गीतकार समीर और सुरिंदर साथी, संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म रंग में सुना, अब अलका याग्निक को सुनिए हरिहरन के साथ खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत जतन ललित का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कुमार सानू को फिल्म परदेश में। तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम के आगे जो गीत होंगे वो इस अंतराल के बाद।

इसमें आप सुन रहे कुमार सानू को आपके साथ साथ देंगी साधना सरगम। फिल्म है दीवाना। नदीम श्रवण के संगीतबद्ध किए इस गीत की धुन, किस गीत को लिखा है समीर ने।

0: ये थे कुमार सानू और साधना सरगम फिल्म दीवाना में।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म माशूक में। रचना गौहर कानपुरी की, संगीत श्याम सुरेंदर का।

अभी आपने माशू फिल्म में कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति को सुना। जयमाला कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दिलीप साहब, आज क्या ऐसे इंजीनियर्स हैं पूरी जिजीविषा के साथ एक नई जो आकाशवाणी की टेक्नोलॉजी आई है उसमें काम कर रहे हैं?
2: जी जी, टेक्नोलॉजी में तो सब माहिर हो गए। अभी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, वो भी अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ मिल गए हैं। उनको मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो 90s का जो प्रवास है अपना।
1: अच्छा, आकाशवाणी का जी।
2: उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, उसमें सारी बातें मैंने रखी थी उसमें। और वो डॉक्यूमेंट्री रंगभवन में आकाशवाणी दिल्ली के वहाँ दिखाई गई थी। ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया था वो डॉक्यूमेंट्री के लिए। और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जब टेप से चालू हो गया, वॉल मशीन चालू हो गया, आज डिजिटल तक आ गए ये सारे। इसमें इंटरेस्ट जो लेता है ना वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी आज का माहौल है, डिजिटल युग का ऐसा माहौल है कि आप इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करो, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का काम करो, ऐसी अभी बातें रही नहीं। हर एक को हर एक काम करना है तो ही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड टाइम में सारे आकाशवाणी स्टेशन विविध भारती ले रहे थे, स्टाफ का प्रॉब्लम था वहाँ पे। यहाँ 24/7 यहाँ काम किया है मैंने, खाना खाने के भी घर नहीं जाता था। ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसने पहला वैक्सीन ढूंढ के निकाला था कोविड का, वो एक साइंटिस्ट थी, मुंबई के लग के जो वसई गांव है वहाँ की थी। उनके गांव में उसका नाम लिखा था, एक बैनर लगाया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन ढूंढ निकाला। एक जो हमारा कलीग था उसके स्टेटस में उसने लगाया था वो बैनर, तो मैंने उसको फ़ोन किया, ये साइंटिस्ट है उसका नंबर मिलेगा क्या? वो US में थी, अमेरिका में थी, तो उसने मुझे नंबर ढूंढ के दिया। फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया और फिर उसका एक रिकॉर्डिंग किया यहाँ, जिसने पहले वैक्सीन निकाला जो टीम में थी, साइंटिस्ट के टीम में थी, उसका एक रिकॉर्डिंग यहाँ विद भारती में हुआ था कोविड के टाइम में। वो सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की थी वो सारी।
1: अच्छा, हाँ।
2: फिर कुछ स्टूडेंट थे, कोई US में था, कोई जर्मनी में था, कोई जापान में था, वो फंस गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग मेरी फैमिली की याद है, उनके जो पिता थे वो लड़की के, वो श्रीलंका में फंस गए थे, उसकी माँ गोवा के पास एक गांव है वहाँ फंस गई थी, और ये लड़की यहाँ मुंबई में थी। तो तीनों को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट सिर्फ फोन से होता था।
1: बहुत बड़ी बात।
2: और 2 महीना पूरा लॉकडाउन था, ग्रुप रिकॉर्डिंग की थी फिर।
1: जी जी, ये बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास रहे होंगे उस समय कोविड काल में, जब हम बुला भी नहीं सकते थे और जा भी नहीं सकते थे। उस स्थिति में आपने उन लोगों को रेडियो के माध्यम से रूबरू करवाया, आपस में मिलवाया, बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी तकनीकी विभाग के एक इंजीनियर के रूप में।
2: जी हाँ, तकनीकी और प्रोग्राम ऐसा कुछ हो ही नहीं।
1: हाँ, ये सबसे बड़ी भावना है कि हम जो है एक परिवार के सदस्य हैं, और चाहे हम कार्यक्रम में का विभाग में हैं और चाहे तकनीकी विभाग में, काम हमें ही सब करने हैं।
2: जैसे हमने गोल्डन जुबली किया था, 60 साल पूरे हुए थे विविध भारती के, तभी एक थीम थी विविध भारती की, जल स्थल और वायु। तो उसमें हमने नेवी, BSF और एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। हम विक्रांत पे गए थे, जो पुरानी विक्रांत थी वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की थी नेवी की। फिर जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे, वहाँ BSF की रिकॉर्डिंग की थी। बनारस और प्रयागराज, वहाँ हमने एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। वहाँ भी ऐसी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, कभी कभी मशीन वहाँ की नहीं चलती थी। तो हमने वहाँ भी कुछ जुगाड़ करके, देसी जुगाड़ करके हमने रिकॉर्डिंग की थी वो टाइम के तो किससे अलग ही
1: मतलब
2: है।
1: शो मस्ट गो ऑन।
2: हाँ, या
1: वो चलते रहना चाहिए किसी भी तरह से हो।
2: एक मैंने प्रोग्राम किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम फिल्म डिवीजन गए थे और वहाँ से वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज लेके आए थे। हमारे साथ हेड ऑफ द प्रोग्राम रेणु जी भी थी, और उस वीडियो प्रोग्राम से हमने ऑडियो प्रोग्राम बनाए थे, रेडियो ड्रामा बनाया था, और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ था।
1: दिलीप साहब जी, आप अपनी बातों से हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से आकाशवाणी की दुनिया को कायम किया गया और आज कहाँ पहुँच गई है आकाशवाणी। जी, जी। तो आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर को आप किस तरह से कहना चाहेंगे?
2: आकाशवाणी का जो मोटो है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और यूनिटी, इसके आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है।
1: जी,
2: जैसे 99% लोगों को तक रीच है आकाशवाणी की, और आज विश्व में तो ऐप के द्वारा सब जगह जुड़ी गई है। और 90 साल में जो देखा जाए ना, एक इंस्टीट्यूट मैच्योर्ड होती है, पीछे से जो चलते आ रहे हैं वो आगे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अभी के जो लोग हैं उनके हाथों में है, वो जो गौरव है, वो जो रिस्पेक्ट है अभी तक बरकरार रखना,
1: बिल्कुल
2: ये लोगों के हाथ में है।
1: बिल्कुल।
2: और मुझे लगता है ये लोग बहुत तरह से अच्छी तरह से निभा रहे हैं ये, और आकाशवाणी का तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये लोगों की भी है।
1: जी बिल्कुल।
2: लोगों के मन में अभी तक आकाशवाणी है, और विविध भारती तो है, पॉपुलर तो है ही सारे विश्व में।
1: विविध भारती तो जीवन संगीत के रूप में जुड़ा हुआ है, और लेकिन हर आकाशवाणी से जो है आम जनता जुड़ी हुई है और उनके जीवन का एक आधार बन गया है आकाशवाणी।
2: विविध भारती की एक विशेषता एक है, वो डिफरेंस बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बाकी जो चैनल्स है, प्राइमरी चैनल्स है या लोकल चैनल्स है, उनमें क्या प्रोग्राम की वैरायटीज होती है।
1: जी,
2: युवाओं के लिए प्रोग्राम है, बालकों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या
1: के लिए
2: कोई है,
1: है
2: साहित्यिकों के लिए है, या कृषि प्रोग्राम्स है, या लोकल कुछ प्रोग्राम्स है, वो रहते हैं, बहुत वैरायटीज है उनके पास। विविध भारती में ऐसे नहीं है। अब ठीक तरह से देखा जाए ये मोनोटोनस प्रोग्राम है, इंटरव्यू है, थोड़ी बातें हो गई, गाना बज गया। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हुए भी, एक मोनोटोनस प्रोग्राम होते हुए विविध भारती की पॉपुलैरिटी इसलिए है, यहाँ क्रिएटिविटी है।
1: जी,
2: प्रोग्राम एक ही टाइप का है, लेकिन वो क्रिएटिव बनाना है।
1: प्रस्तुत करने के तरीके अलग-अलग
2: हैं, अलग है।
1: जो प्रसारण करता है, जो अधिकारी गण है, उसको अलग अलग तरीके से प्रसारित करते हैं, तो वो एक वैरायटी के रूप में आ जाता है। तो आप तकनीकी विभाग में तो थे ही, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक सहायक निदेशक के रूप में भी आपने काम किया है, क्या भूमिका रही सहायक निदेशक के रूप में आपने आकाशवाणी को किस तरह से जिया?
2: प्रमोशन में मुझे ट्रांसफर हो गई वो पश्चिम क्षेत्र में, पूरा पश्चिम क्षेत्र 5 राज्यों का है, उसमें मुझे प्रशासन का काम दिया गया था, और वहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन था स्टेशन और डायरेक्टरेट, उनके बीच का जो हो जो मिडल मन रहता है वो जोनल ऑफिस रहता है, और जो यहाँ की बातें दिल्ली तक पहुँचाना, दिल्ली की बातें वहाँ तक पहुँचना, वो जो पूरा चेन है, चेन बरकरार रखना, और सारी बातें स्टेशन ठीक तरह से करता है कि नहीं उसको ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना।
1: लेकिन जैसा कि आपका मन एक कलाकारी मन है, हमने आपसे बातचीत में पाया कि आप कला में ज़्यादा रुचि लेते रहे, तो कला से होते हुए प्रशासन तक जो ये सफ़र रहा, कैसे मन को समझाया होगा? क्योंकि जब आप यहाँ थे तो आपने तकनीकी विभाग भी संभाला और साथ में प्रोग्राम साइड में भी आपका हस्तक्षेप रहा, लेकिन चूंकि सहायक निदेशक के रूप में एक प्रशासनिक काम ज़्यादा हो गया, उसमें एक अलग रूखापन आ जाता है काम में, और जिम्मेदारी अलग किस्म की आ जाती है, तो किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा?
2: बुरा तो लगा यहाँ से जाते समय
1: जी,
2: कि विविध भारती में 33 साल थे, और यहाँ का एक केबल न केबल एक इक्विपमेंट सारा मैंने इंस्टॉल किया था, तो थोड़ा लगाव था इससे, तो जाते समय बुरा तो लगा, लेकिन एक था ना, एक लोकल स्टेशन छोड़ के मैं जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो एक थोड़ी खुशी भी थी वहाँ काम कर रहा हूँ। प्रशासन का तो मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कठुआ में था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में था।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तभी 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया था, तो वहाँ प्रशासन का काम था मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग हेड था वहाँ पे, तो वो थोड़ा अनुभव था मुझे, वो थोड़ा अनुभव वहाँ काम आया, लेकिन वो स्टेशन का काम था और ये पूरा जोन का काम था, पूरा क्षेत्र का काम था।
1: लेकिन आपने इसे भी बहुत ही बखूबी निभाया,
2: ऐसे मेरे वरिष्ठ तो बोलते हैं।
1: नहीं, हमने भी आपके बारे में जाना और सुना, तो पता चला कि दिलीप कुलकर्णी साहब वहाँ पर भी काम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। तो सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग और निजी FM चैनल्स के दौर में आकाशवाणी आज भी प्रासंगिक है, जबकि इसकी प्रासंगिकता को लेकर हजार बातें कही गई, हजार तरीके से कहा गया, लेकिन आकाशवाणी कहीं डगमगाया नहीं। तो आज डिजिटल रेडियो, न्यूज ऑन AIR एप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब की उपस्थिति, FM के अलावा पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: एक किस्सा बताता हूँ मैं, ऋषि कपूर जी के हम घर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो ऋषि कपूर जी ने उनका अनुभव बताया था।
1: जी,
2: जब भी शूटिंग में जाता हूँ, कार से जाता हूँ, मैं प्राइवेट चैनल FM चैनल में ट्यून करता हूँ, और उनकी बकबक सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, मैं फिर से विविध भारती पे आ जाता हूँ, और वहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है।
1: जी,
2: जो आकाशवाणी के मैं कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे मालूम रहता है, ये ऋषि कपूर जी ने बताया था कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आने वाला है, और उनके उद्घोषों का नाम उनको पता था।
1: अच्छा,
2: तो ये जो बड़े स्टार जो बता रहे हैं वो भी विविध भारती सुन रहे, आकाशवाणी सुन रहे, तो आकाशवाणी तो रहेगी, आकाशवाणी तो डिजिटल आने जो पॉडकास्टिंग आने दो, हमें यहाँ रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा जी। और एक अच्छा बदलाव है ये,
1: यानी कोई भी चीज़ें आती हैं जैसे जैसे, हमें उसको अपनाना भी होगा और अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आज आकाशवाणी की जो ये ऐतिहासिक यात्रा है जिसके लिए हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी का प्रभाव है, आप उसे कैसे देखते हैं?
2: कुछ लोग बोलते हैं अभी नया जनरेशन है, जेन जी है, वो आकाशवाणी की तरफ नहीं आ रहा है
1: जी,
2: अभी इनको अपनी तरफ खींचना अभी अपना ही काम है, वो क्या लाइक करते क्या डिसलाइक करते वो देखना पड़ेगा हमें, और उसी तरफ से हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और जो हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी फॉर एवर रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेगा कि हमने मैग्नेटिक टेप पे प्रोग्राम बनाए फिर डिलीट हो गए, वो टेप दूसरी प्रोग्राम के लिए यूज़ किए, ऐसा नहीं होगा। हमारे अभी प्रोग्राम सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और ये बदलाव थोड़े देर के लिए रहते हैं फिर वापस लोग पीछे मुड़ के जाते हैं। आज भी गुरुदत्त जी को ये लोग याद कर रहे हैं, राज कपूर जी को कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनके रिमिक्स बन रहे हैं, नए गानों के तो रिमिक्स नहीं बन रहे हैं।
1: और आज भी हम जितने समारोह देखते हैं वहाँ पर पुराने गाने ही गाए जाते हैं, ज़्यादातर पुराना फैशन लौट कर आ रहा है, यानी सब कुछ लौट रहा है।
2: जो प्योरिटी हो तो रहेगी
1: जी, जैसे कि वेदों की ओर लौटो कहा गया, तो ये इसीलिए कहा गया, और ये जो वापस लौटना है ये यही इंगित कर रहा है कि सब कुछ लौटेगा।
2: जी जी।
1: तो दिलीप साहब, आपसे इतनी सारी बातें हमने की हैं, चलते चलाते आपकी पसंद का एक गीत हम सुनना चाहेंगे।
2: एक गीत हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, वो टाइम मल्टी ट्रैक फैसिलिटी नहीं थी
1: जी,
2: और 40 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग किए थे हमने यहाँ पे। अच्छा, इसी स्टूडियो में की थी।
1: अच्छा सर।
2: फीमेल कोरस, मेल कोरस, पर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पाटेकर म्यूजिक डायरेक्टर थे आप, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमने 40 ट्रैक में रिकॉर्डिंग की और उसका पोस्ट प्रोडक्शन 3 दिन तक चला।
1: अच्छा।
2: वो 40 ट्रैक सब स्टूडियो में कन्वर्ट करने थे।
1: बहुत खूब।
2: तो मिलिन इंगले जी मेल वॉइस थी और बेला शिंदे जी फीमेल वॉइस थी
1: जी।
2: तो वहाँ हम रात यहाँ 2-2 बजे तक यहाँ स्टूडियो में रुकते थे
1: जी।
2: बीच में बाहर जाके कभी 12-1 बजे बाहर जाते थे चाय पीने के लिए, तो वो टाइम साइकिल पे चाय आती थी केटल में।
1: अच्छा।
2: आज भी घूमते हो रात को 12 बजे के बाद, तो हम चाय पी के वापस स्टूडियो में आते थे। वो गाना है मैं हूँ विविध भारती।
1: अरे वाह जी।
2: और वो गोल्डन जुबली के लिए बनाया था लेकिन वो फॉर एवर गाना है, और विविध भारती के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं गाना, मैं हूँ विविध भारती।
1: अरे वाह। चलिए तो हम सुनते हैं ये गीत जिसे आपने 40 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, और वो एक अभूतपूर्व कार्य था उस समय का, तो और हम भी इस गाने को सुनना पसंद करेंगे।

0: तो दिलीप साहब, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमने की आकाशवाणी के इस 90 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती को दिया।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
3: स्मृतियों के स्वर।

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने।

0: और सुनो आया, शीशी वाली दवाई 4-4 घंटे पर देना। एक खुराक अभी दे देना, और पाउडर के लिए समझ गई ना?
1: जी हाँ।
0: वक्त से दे देना, अभी टेम्परेचर है उसे।
1: बहुत अच्छा बहू जी।
0: और बीच में एक बार बुखार भी देख लेना। ओफो, मर गए, आज देर हो गई। अभी तो शंटू मंटू को तैयार करना है, नहीं तो आया उसके साथ ही तंगी रह जाएगी। आया आया, जरा मेरी कलम में स्याही भर देना। ओफो, कहाँ रख दिया?
1: कौन सी बहू जी?
0: अरे भाई, धूप का चश्मा।
1: हाँ हाँ,
0: जरा दराज देखो। और सब ठीक?

0: और सब ठीक से मेज पर लगा देना, दवा ठीक से दे देना।
1: जी जरूर। राजा भैया देखो हम क्या लाए हैं, मीठा मीठा शरबत। मुंह खोलो तो।
2: सच्ची? देखे, झूठी नहीं तो, हम समझ गए दवाई है।
0: अच्छा लो झट से मुंह खोलो, खोलो खोलो। ए आ, आ फिर बंद कर लिया। खोलो भैया।
2: हम दवाई नहीं पियेंगे।
0: पी लो भैया, नहीं तो देर हो जाएगी।
2: हो जाने दो, हम तो नहीं पियेंगे।
0: अरे रे, मुंह पर से चादर तो हटाओ।
2: तुम पहले दवा हटाओ।
0: अच्छा लो, ए ये दवा का गिलास यहाँ रख दिया।
2: अब ठीक।
0: लेकिन ये बताओ कि दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा, और बुखार नहीं उतरेगा तो फिर कंधे पर बैठकर गुड़िया वाली नुमाइश कैसे चलोगे?
2: गुड़िया वाली नुमाइश? चलो आया, चलो ना।
0: हाँ हाँ, उठना नहीं, बुखार बढ़ जाएगा। ए लो, बस एक घूंट में गट से सारी दवा पी जाओ, फिर ले चलेंगे।
2: बड़ी चैंट, दवा तो हम नहीं पियेंगे।
0: फिर हम जबरदस्ती पिला देंगे? हाँ
2: हम तो नहीं पियेंगे।
0: तब फिर ऐसे नहीं।
2: नहीं नहीं आया, हम तुमसे नहीं पियेंगे, मम्मी से पियेंगे।
0: मम्मी तो दफ्तर गई हैं। पी लो भैया, नहीं तुम्हें बहुत बिगड़ेंगी।
2: तुम्हें डांट पड़ेगी, तब तो खूब मजा आएगा। कल तो मम्मी ने दवा पिलाई थी, परसों भी। तुम कौन होती हो? आया भद्दी भद्दी, भाग जाओ यहाँ से।
0: सच्ची आफत कर मारी है, इतनी देर में कितना काम हो जाता। शंटू मंटू की दूध की बोतल धोनी है, कपड़ों पर इस्त्री करनी है।
2: ये सब काम तो दीदी करेंगी।
0: दीदी के इम्तिहान है, उन्हें पढ़ना है ढेर सा।
2: अच्छा आया, हमें गिलास पकड़ा दो। तुम आंखें बंद करो, हम अपने आप पियेंगे। दे दो ना गिलास।
0: अच्छा,
2: आया।
0: अच्छा लो पकड़ो। ए संभाल के, पकड़ लिया। अच्छा लो अब जल्दी से पी जाओ। एक दो।
2: नहीं नहीं, तुम पहले आंख तो बंद करो।
0: अच्छा लो बंद कर लिया। एक दो तीन। ए फेंक दी सारी दवा। ओहो, सारी दवा बेकार गई। जो मन में आए करो, हमें क्या।
2: मम्मी आज तुम स्कूल नहीं जाएंगे।
3: क्यों, आज क्या है?
2: आज तुम घर पर रहोगी ना।
3: तो इससे क्या, छुट्टी तो हमारी है ना।
2: बस मम्मी, हमारी भी छुट्टी है।
3: नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं, जल्दी से जाओ। आया से कहो स्कूल के लिए तैयार कर दे।
2: मम्मी
3: बस जाओ जाओ जाओ, बस जाओ। नहीं गलत बात है, एक दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी, फिर पिछड़ नहीं जाओगे।
2: नहीं मम्मी, आज ना भेजो।
3: जाओ जाओ राजा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शंटू मंटू के लिए झगड़े सिलने हैं, उनकी बिब बनानी है, बहुत काम है, तुम जल्दी से।
2: मम्मी बड़ा मजा आएगा, घर में दिन भर हम तुम खेलेंगे। आज तुम्हें हरा ना दिया तो?
3: भैया फिर वही जिद, फौरन जाओ। आया ले जाओ इसे। ऑफिस से छुट्टी तो दिन भर इनके साथ सर खपाओ, जैसे और कोई काम ही नहीं।
2: आया। चलो हम भी भाग चले।
0: क्यों भैया, क्या हुआ?
2: मन नहीं लगता।
0: अच्छा चलो शंटू मंटू को खिलाएं थोड़ी देर।
2: नहीं आया, वो दोनों गंदे हैं, पेपे रोते रहते हैं, उनके मारे तो मम्मी हमें भी नहीं खिलती हैं।
0: तो फिर चलो उठो, लॉन पर गेंद खेले हैं, अब तो कुछ हंसो तो।
4: ए आई हंसी ये आई।
2: नहीं लॉन पर हमें नहीं अच्छा लगता।
0: तब कहाँ खेलोगे?
2: अनिल के घर चलो ना।
0: रोज रोज अनिल के घर?
2: तो क्या हुआ, उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती, मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती हैं।
0: अच्छा ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे।
2: चलो ना।
0: रुको तो, ओ धोती छोड़ो भैया, फट जाएगी।

0: देखो अनिल के यहाँ बस हो गई घंटों की छुट्टी, एक अकेले भैया ही नहीं संभल पाते, ऊपर से बहू जी नाराज होती हैं कि तुम शंटू मंटू का काम ठीक से नहीं करती हो। हाँ नहीं तो न स्वेटर पहना न मोजे, मेरी ही डांट करवाएंगे। राजा भैया अंधेरा होने लगा, आओ अब घर चलें।
1: चलेंगे आया, थोड़ा सा और खेलने,
0: फिर कल खेलना।
1: देखो अनिल, आया तो समझती नहीं, इतना घर बन गया, जरा सा बचा है पीछे लगी है।
0: शाम हो गई है, गीली मिट्टी से बहुत खेल करोगे तो सर्दी लग जाएगी।
1: तुम पीछे का दरवाजा बनाओ अनिल, ये तो मानती ही नहीं, ऐसे ही बाबा करेगी।
0: राजा भैया,
1: ओफो आया, मानती क्यों नहीं। अच्छा इधर आओ, आओ ना आओ।
0: यहाँ तो गीला है,
1: सिर्फ जरा सा तो पानी है, डरती हो। आओ ना इधर आओ, बैठो यहाँ। अच्छा बताओ तो हमने कौन सी चीज बनाई है?
0: मिट्टी का ढेर है ये तो।
1: हाय आया, तुम इतना भी नहीं समझती हो।
0: तो और क्या है?
1: आया ये मकान है, घर है, समझी?
0: कान फट जाएगा ऐसे चिल्लाओगे तो, जाओ हम बोलेंगे ही नहीं।
1: मत बोलो, बड़ी आई आया कहीं की, जो हम भी नहीं बोलते तुमसे।
0: बस गुस्सा हो गए। अच्छा बताओ,
1: ये है आया, इधर देखो ना, ये है इसकी खिड़की और ये है इसका दरवाजा।
0: आय हाय, खिड़की दरवाजे में ताला कैसे बंद करोगे, सब तो खुला है।
1: इसमें आया तो ताला थोड़े ही पड़ेगा।
0: तो क्या सब खुला रखोगे?
1: हाँ तभी तो मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा, फिर तो कोई हमें नहीं रोकेगा।
0: इतने से मकान में रहेगा कौन कौन?
1: इसमें आया बस तीन जने रहेंगे, मम्मी पापा हम
0: और शंटू मंटू दीदी।
1: और कोई भी नहीं, फिर तो भीड़ हो जाएगी।
0: अच्छा तो हमें भी नहीं रखोगे?
1: तुम्हें तो आया फौरन निकाल देंगे, तुम थोड़े ही रहोगी, और फिर तुम तो इतनी मोटी हो, आओगी कैसे इसमें?
0: झुक कर घुस जाएंगे।
1: झुक घुस जाओगी, लेकिन फिर निकलोगी कैसे, फंस जाओगी? ना भैया ना, तुम तो सारा मकान ही तोड़ दोगी।
0: हमें निकाल दोगे तो हम खाएंगे क्या?
1: हम नहीं जानते आया, तुम्हारे मारे तो मम्मी हमें अपने साथ कभी खिलाती भी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा, हम मम्मी की गोदी में बैठ कर ठाक से खाएंगे।
0: तो फिर हम रोएंगे।
1: अच्छा रुको रुको, हम मम्मी से कह देंगे तुम घर पर रहना, शंटू मंटू खिलाना, बस अब चुप हो जाओ। अरे भाई कह तो रहे हैं कि तुम्हें रख लेंगे शंटू मंटू के लिए।
0: हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे।
1: नहीं भाई मान जाओ ना, तुम तो सब गड़बड़ कर दोगी।
0: नहीं भैया, हम तुम्हारे आंगन में स्वर्ग बनाएंगे।
1: क्या स्वर्ग? आया स्वर्ग तो अनिल की माँ कहती है मरने के बाद जाते हैं, तुम हमें मार डालोगी?
0: नहीं राजा भैया, हम जो स्वर्ग बनाएंगे ना उसमें जानते हो क्या होगा?
1: हम कुछ भी नहीं जानते, तुम ये तो बताओ कि वहाँ खिलौने होंगे कि नहीं।
0: हाँ हाँ होंगे।
1: अरे आया मम्मी से तो पूछ ले। आया स्वर्ग में मम्मी भी रहेंगी ना?
0: हाँ हाँ।
1: आया स्वर्ग में तो मम्मी हमें प्यार करेंगी ना?
0: राजा भैया को तो मम्मी अभी भी कितना प्यार करती है।
1: करती थी आया, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आया मम्मी पहले बिल्कुल नहीं डांटती थी, जब से शंटू मंटू आ गए ना हमारी सुनती ही नहीं, इनके मारे तो।
0: देखो भैया, स्वर्ग तो खुशी के लिए होगा, उसमें जो लड़ाई करेगा उसे निकाल दिया जाएगा।
1: तब तो हम भी नहीं लड़ेंगे आया।
0: कोई भी राजा बेटा लड़ाई थोड़ी करता है।
1: मगर आया एक बात तो बताओ, हम ढेर सी मिट्टी जमा कर ले और जो आंगन है ना
0: घर में।
1: अरे हाँ अपना आंगन
0: है तो
1: बस वही स्वर्ग बनाएंगे।
0: आंगन में स्वर्ग?
1: हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा आया, चलो हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, लेकिन जब मम्मी हमें गोदी में लेंगी तो तुम अभी से मत आना।
2: अरे तुम अभी सोए नहीं भैया? अरे हमसे बोलोगे नहीं, क्या हुआ? अरे अरे अरे इतना गुस्सा, अरे मुंह भी छुपा लिया। आया कहाँ है?
1: आया को हमने भगा दिया, वो गंदी है, हम उससे नहीं बोलेंगे।
2: नहीं नहीं रोते नहीं बेटे, क्या बात है, क्या बात है बेटे, आज तुम इतनी देर तक सोए क्यों नहीं?
1: मम्मी बताएं।
2: हाँ हाँ
1: यहाँ बैठो मम्मी, और पास।
2: हाँ,
1: मेरे पास आओ ना।
2: हाँ, ले लो तुम्हारे पास।
1: अब बताएं।
2: हाँ।
1: मम्मी हमें नींद नहीं आती है, तुम कहानी सुनाओ ना।
2: अब तो बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, कल बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी।
1: नहीं आज ही, अभी सुना, कल तो आया गंदी गंदी सुना कर जबरदस्ती सुला देगी, बड़ी खराब है। मम्मी वाली सुना दो ना।
2: कौन सी बेटा?
1: वही परी वाली जो तुमने एक बार सुनाई थी, जब हम गिर गए थे, जब मम्मी तुम हमें गोद में लेकर खाना खिलाती थी।

0: जब मम्मी आया नहीं थी वही वाली।
1: वो तो बहुत लंबी है, इस वक्त तो याद भी नहीं।
0: याद है याद है, सुनाओगे नहीं तो फिर हम भी नहीं सोएंगे। सुना दो मम्मी।
1: अच्छा जल्दी से लेटो, तो आंखें मूंदो।
0: ये लो।
1: एक थी सोन परी। एक दिन वो बहुत सी परियों के साथ पहुंची राजा के महल में। महल के आंगन में
0: स्वर्ग था।
1: अरे तुम्हें तो इतना याद है।
0: मम्मी आज हमने आया के साथ पक्का कर लिया है कि हम भी आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। अरे मम्मी तुम तो रो रही हो। अच्छा अच्छा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। मम्मी रो नहीं, हम नहीं बनाएंगे स्वर्ग। बस अब तो चुप हो जाओ मम्मी।
1: नहीं नहीं बेटी, मैं रो थोड़े रही थी, वो तो आंख में कुछ चला गया था। हम जरूर आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। हाँ तो सोन परी जब महल में पहुंची तो वहां पर सबसे आगे एक बढ़िया सा भैया भैया बस सो गया। इतनी सी कहानी सुनाने की उसके लिए।

आंगन में स्वर्ग। अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। लेखन और निर्देशन किया दुर्गा मेहरोत्रा ने। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट। अब आज का हवामहल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
3: प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोटिवेशनल बूस्ट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीरे दी वेडिंग फिल्म के गीत से, जिसे गाया है विशाल मिश्रा, अदिति सिंह शर्मा, ध्वनि भानुशाली और निकिता आहूजा ने। संगीत विशाल मिश्रा का, बोल अन्विता दत्ता के।

सुनिए थैंक गॉड फिल्म में योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन को बोल लिखे रश्मि विराग ने, संगीत तनिष्क बग्गी का।

दिलजीत सुनिए शंकर विशाल लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत, आवाजें अनुषा मानी और विशाल ददलानी के, फिल्म का नाम है डॉन 2।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शिद्दत फिल्म में अंकित तिवारी को बोल कुंवर जुनेजा के संगीत गौरव देशगुप्ता का।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म खाकी में, बोल समीर के संगीत राम संपत का।

अभी आपने उदित नारायण और श्रेया घोषाल को खाकी फिल्म में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से है। तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने, वो लिखे हैं नासिर फराज ने, आवाजें हैं जुबिन नौटियाल, पलक मुच्छल और नासिर की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को

0: ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
2: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
3: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो

0: कंपनी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारी कसम फिल्म से। इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने। रचनाकार आनंद बख्शी।

द ग्रेट गैम्बलर लीजिए अब इस फिल्म में सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को। संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने, बोल आनंद बख्शी के।

लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म गुलाम में। गीतकार समीर, संगीतकार जतन ललित।

देश परदेश। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, बोल अमित खन्ना के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की और भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज़ उसके लिए रखा गया, मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा।

जाता है, और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्ने विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अजित सत्य में अदाकारी करने का

0: मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्स अप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्स अप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पर बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था, और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में

0: एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना, ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुंचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
4: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
4: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
5: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया, पागल हो गया, ए भगवान मेरा दोस्त पागल हो गया।
5: अरे पागल नहीं।

0: भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
0: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
0: हाँ।
1: किसको?
0: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
0: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
2: कॉन्ग्रेचुलेशन ए आंडू पांडो।
3: यस सर।
2: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
2: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

किए जाए। उली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है। आगे

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

नजरों ने नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है। कोई

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: छाया गीत।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

खिल उठी हैं रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये

0: जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।